0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी, फिर इसने वालों आप रेडियो वजी तो जी हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। फिर साथ है शोरा न्यूज़ोवा और हमारे प्रोड्यूसर अजीज़ोवा दौलत। इस घंटे की मुख्य खबर है, दुशंबे में महिलाओं की भूमिका पर गोलमेज बैठा गयो जेत। दुशंबे में जियोन जीतसु और ग्रेपलिंग की गणतांत्रिक प्रतियोगिता आयोजित। सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पाठक प्रतियोगिता का आयोजन और अन्य समाचार हिंदी विभाग को सुन सकते हैं। ताजिकिस्तान गणराज्य के सरकार के अधीन महिला एवं परिवार मामलों के समिति के पहल पर दुशंबे शहर में राज्य निकायों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिका समाज के बीच सहयोग का समन्वय विषय पर एक गोलमेज बैठक आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य 2021-2030 के लिए महिलाओं की भूमिका को सक्रिय करने के राष्ट्रीय रणनीति के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम में महिला एवं परिवार समिति का नेतृत्व राष्ट्रपति कार्यकारी कार्यालय के प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि, विभिन्न मंत्रालयों और स्थानीय प्रशासनिक निकायों के अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि तथा विशेषज्ञ शामिल हुए। बैठक महिलाओं के सामाजिक स्थिति को और मजबूत करने तथा इस क्षेत्र में सरकार और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के बीच प्रभावी सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया। अन्य प्रतिभागियों ने आगे के सहयोग को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए और 2024-2030 के कार्ययोजना को प्रभावी रूप से लागू करने में योगदान देने के अपनी तत्परता व्यक्त की। चीन के जियांगसू प्रांत के नगनजिन का शहर में 24 या 23 जून तक जियांगसू मध्यशाही सांस्कृतिक सप्ताह 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ताजिकिस्तान ने अपने पर्यटन संबंधों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक हस्तकलाओं का प्रदर्शन किया। ताजिकिस्तान के पर्यटन विकास समिति के उपाध्यक्ष ज़ियोलो सलीमज़ोदा ने चीन और मध्यशाही देशों के बीच पर्यटन सहयोग को मजबूत करने, सजग पर्यटन क्षेत्र विकसित करने और संयुक्त पर्यटन मार्गों के विस्तार पर जोर दिया। ताजिक कंपनी असरोरी संग पत्थरों के रहस्य का प्रदर्शन स्थल विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जहां कीमती और अर्धकीमती पत्थरों से बने हस्तनिर्मित उत्पाद चेतर और समृद्ध चेहान प्रदर्शित किए गए। इस प्रदर्शनी ने चीनी नागरिकों, मध्यशाही प्रतिनिधियों, पर्यटन संगठनों और व्यवसायिकों को ताजिकिस्तान के सांस्कृतिक हस्तकला और पर्यटन अवसरों से परिचित कराया। कार्यक्रम के अंत में ताजिक पक्ष ने सभी प्रतिभागियों को सितंबर 2024 में दुशंबे में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी 2024 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। ताजिकिस्तान के राज्य स्वतंत्रता की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर दुशंबे शहर में युवा और किशोरों के बीच जियो जीतसु और ग्रीन प्लिंग की गणतांत्रिक प्रतियोगिता आयोजित की गई। उद्घाटन समारोह में ताजिकिस्तान सरकार के युवा एवं खेल समिति के उपाध्यक्ष मोहम्मद तोलिब शोकिरजोदा तथा ताजिकिस्तान के जियोंग जीतसु महासंघ के अध्यक्ष मनुचेर करीमजोदा शामिल हुए। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य जियोंग जेत्सू और ग्रेपलिंग खेलों का विकास करना, युवाओं के खेल कौशल को बढ़ावा, स्वास्थ्य जीवन शैली को प्रोत्साहित करना तथा आगामी प्रतियोगिताओं के लिए श्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन करना था। तजिकिस्तान के राष्ट्रीय पुस्तकालय के पहाड़ पर गणतंत्र स्थान के सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पाठक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में स्कूलों के छात्र, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी, स्नातकोत्तर शोधकर्ता और शिक्षक, वैज्ञानिक, साहित्यकर्ता तथा विभिन्न पेशों से जुड़े सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। प्रतिभागियों को दो समूह में बांटा गया है, 18 वर्ष से कम आयु वाले और 18 वर्ष से अधिक आयु वाले। विजेताओं का चयन पढ़े गए पुस्तकों की संख्या और पुस्तकालय से लिए गए पुस्तकों के आधार पर किया जाएगा। प्यारे समाचार हमारे दूसरे प्रसारण जा रहे हमारे रेडियो के साथ रहिए।